0: नमस्ते
1: रेडियो।
0: बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई।

0: झगड़ने की क्या बात है?
1: पहले पहले भंवरे जैसे पास पास मंडराए, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरका। समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है। दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए। कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।